0: हाँ साहब, आवाज आंख रो रो के तलब करती है रहमत तेरी,
1: अल्लाह
0: दिल धड़कता है तो आती है यही एक आवाज। आवाज समा फरमाए, क्या आवाज?